यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केएल वेणुधुनी 90.4 एफएम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: शिष्टाचार का महत्व. मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में हर हाल में उसे चाहिए इज्जत, जिसके बिना वो सुख से नहीं जी सकता. लेकिन इज्जत तो उसी की होती है जो दूसरों की इज्जत करता हो. यानी जीवन में शिष्टाचार का पालन करता हो. व्यक्ति का मान तो तभी बढ़ता है जब शिष्टाचार के साथ वो सभी के साथ पेश आता है. संसार में सम्मान बढ़ाने वाला महान गुण है शिष्टाचार. शिष्टाचार यानी व्यवहार में छोटे बड़े की मर्यादा का ध्यान रखना और बोलचाल में आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना. समय व स्थान के मुताबिक नीति नियमों का पालन करना. बोलते वक्त तमीज और फजीलत यानी मैनर्स का ध्यान रखना. खुद को परिस्थिति के अनुकूल मोड़ लेना. हंसी खुशी के समय हंसना और दुखद प्रसंगों में गंभीर हो चुप रहना. प्रसंग के अनुरूप तोल मोल के शब्द बोलना आदि आदि सभी शिष्टाचार के विविध रूप है. व्यक्ति में अद्वितीय आकर्षण पैदा करने वाला ये महान गुण है शिष्टाचार. भले ही व्यक्ति कितना ही रूपवान, धनवान या बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसमें बोलने की जरा भी तमीज ना हो, बार बार अपशब्द निकालने की उसकी आदत हो, तो ऐसा व्यक्ति अशिष्ट यानी अभद्र माना जाता है. पग पग पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता है. लेकिन मान तो उसे मिलता है जो दूसरे के मान मर्तव्य का पूरा पूरा ध्यान रखता है. बड़ों का सत्कार, साथियों को सहकार और छोटों को स्नेह लुटाना ही सही शिष्टाचार का अप्रतिम लक्षण है, जो मधुर और घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देता है. शिष्टाचार के अभाव में सोने जैसा आदमी भी माटी के मोल बिकता है. आजकल के जमाने में अगर किसी को तोहफा देना हो या चीज वस्तु बेचनी हो तो उसे आकर्षक आवरण से ढका जाता है. ऐसे ही शिष्टाचार भी कमी कमजोरियों को सहजता से ढक लेता है और व्यक्ति को आकर्षक बना देता है. शिष्टाचार का पालन करने वाला सभी का प्रिय होता है. ब्रह्मा कुमारी के वर्तमान महासचिव आदरणीय भ्राता निर्वेय जी अपने सुंदर शिष्टाचार के कारण ही सबको अपना बना लेते हैं. सच पूछो तो ये महान गुण व्यवहार कुशलता का कवच है. अतः शिष्टाचार को अपनाइए और दुनिया में इज्जत पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हाथों में 18,880 करोड़।
2: संदेश, योग से जीवन बने विशेष,
4: हाथों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
7: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
5: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
8: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुनी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विणुध्वनि 90.4 FM के एल ई कनसु भाषा संगम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों हर बार की तरह हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा। भारत के अग्रणी मेमोरी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, यानी स्मरण शक्ति और कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इन विषयों में वे प्रशिक्षक है। सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले ये एकमात्र भारतीय है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जिसके बारे में सुनकर आई एम श्योर आप सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील होगा। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का शो।
1: सर विणुध्वनि के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना कि सिर्फ स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेके चिंतित है या फिर वो भूल जाते हैं, बल्कि बड़े भी बहुत से ऐसे बातें रहती है जो भूलते आते हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई अगर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे मिले आज, तो एक 5-6 महीने के बाद में अगर आप मिलेंगे तो मैं शायद ये सोचूंगी कि हाँ इनको कहीं तो देखा था, कहाँ देखा था, मतलब बहुत बार मैं सोचूंगी वो, और उसके बाद में मुझे ये सिर्फ याद आएगा शायद कि हाँ इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, बट नाम नहीं याद आएगा।
2: सही है।
1: तो ऐसी बहुत सी बातें होती रहती है हमारी लाइफ में और इसको हम बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, हालांकि ये कभी बीमारी भी हो सकती है, ये अभी हम जान लेंगे आपसे बात करते करते। और ये हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो अगर इम्प्रूव होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे वो हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मेमोरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मेमोरी।
2: मेमोरी में 3 स्टेजेस होते हैं मैम। पहले तो रिसेप्शन होता है, मतलब अभी मैं आपका बात आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पहले सुनना है, रिसीव करना। दूसरा अपना ब्रेन के अंदर स्टोर करने का, अनदर इज कॉल्ड स्टोरेज। तीसरा जो है ना, जो और कोई पूछेगा तो आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, फिर उनको बताना होगा या लिखना होगा, मतलब रिकॉल, मतलब रिसेप्शन, स्टोरेज एंड रिकॉल, ये 3 स्टेज होते हैं मेमोरी का। और आजकल का बच्चे बहुत सारे ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं स्कूल जाते हूँ मगर मुझे लेसन तो समझ में आता है मगर बिल्कुल हमें याद नहीं रहता। और कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक से नंबर नहीं लाते, और टीचर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं ना बच्चे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या, हर पेरेंट का एक ही इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल जाए और अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा नंबर लाए। ओके, फाइनली आप जो कोई भी है, फाइनली बच्चों का तरक्की, बच्चों का प्रोग्रेस करने का, और उसमें मेमोरी प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। ओके, वेदर यू आर स्टूडेंट, ओके आपको टेक्स्ट बुक याद करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना होगा, या आप प्रोफेशनल है तो कोई प्रेजेंटेशन होगा, कोई स्पीच होगा, कोई नेताजी है उनको 2-3 पेज का स्पीच याद करना होगा, या आपको न्यूमेरिकल डेटा याद करना होगा, या एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको चश्मा नहीं मिलता, कहाँ रखे हम लोग, कभी कभी मोबाइल को मिस्ड कॉल देना पड़ता है, कभी कभी हमको गाड़ी का चाबी नहीं मिलती राइट, कभी पेन नहीं मिलता, कभी औरत लोग ना जैसे हम लोग ना दूध रख के स्टोव के ऊपर भूल जाते हैं, ऐसा हर इंसान का कोई ना कोई मेमोरी प्रॉब्लम है। तो ये हमको सीखना होगा मेमोरी, हम लोग ये क्या, हाउ टू इम्प्रूव दिस मेमोरी, इफ यू कैन लर्न दिस एवरीवन कैन हैव सुपर मेमोरी।
1: तो ये इम्प्रूव हो सकती है,
2: अब्सोल्युटली हो सकती है। सो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि इफ आई गॉट अ गुड मदर गुड फादर, मतलब दोनों पढ़े लिखे हैं, हम लोग अच्छे खानदान के हैं, तो मेमोरी पैदाइश मतलब बर्थ से होती है। तो ऐसा होता तो अब्दुल कलाम जी उनका मम्मी पापा तो नहीं पढ़े थे, और वो एक छोटा सा गांव रामेश्वर में पैदा हुआ था, बचपन में पेपर भेज रहा था, एक मस्जिद के बगल में गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, हाउ ही वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज नंबर 1 प्रेसिडेंट एंड देन वो साइंटिस्ट बने। इसका मतलब क्या है, मेमोरी डजंट कम बाय बर्थ, मेमोरी इज अ स्किल। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, मेमोरी एक स्किल है। यदि आप जानेंगे, टेक्निक करेंगे, प्रैक्टिस, इफ यू कैन मास्टर, एवरीवन कैन परफेक्ट दिस मेमोरी। उम्र की बिल्कुल नहीं है, छोटा बच्चा हो या मिडिल एज में हो, ओल्ड एज में हो, एनीवन कैन स्टार्ट एंड लर्न दिस मेमोरी।
1: ग्रेट, सुन के तो बड़ी खुशी हुई सर।
2: yes.
1: क्योंकि कौन से भी एज में रहे हम अपनी मेमोरी डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप थोड़ा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: हम एक्चुअली हैदराबाद के एक छोटा सा एक गांव है, उसका 100 किलोमीटर का, और जब मैं पैदा हुआ मेरा घर का, तो आज आई गॉट 5 बहनें और एक भाई, मैं सबसे छोटा था। 12 साल तक जब तक मैं 12 साल था तब तक स्कूल भी नहीं गया। मतलब इतना पुअर फैमिली था, मैं एक शॉप में काम करता था बिकॉज इतना सारे बच्चे थे। और 12 साल का उम्र में मैं गया डायरेक्टली 7th क्लास, 10th क्लास खत्म हो गया तो उसके बाद में खाना नहीं था घर में, वहां से भाग गया मैं मद्रास, अब जो चेन्नई बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: और उसमें एक एयरफोर्स का मेस था, वहां टेबल क्लीन करना, वैसा हमारे जिंदगी शुरू हुआ था। उनको देखते देखते मैंने सोचा यार हाउ कैन आई बिकम ए टेक्नीशियन, वो एयरमैन बनो, वहां से फिर एयरफोर्स का पायलट बना, मतलब उससे स्क्वाड्रन लीडर बना, इज इक्वल टू मेजर इन द आर्मी। ओके। और मैं एयरफोर्स में रहता, आई वुड हैव बीन एन एयर वाइस मार्शल। और मैंने सोचा जो लड़का 12 साल तक स्कूल नहीं गया और 30 ईयर्स में स्क्वाड्रन लीडर बना, और हमको क्या करना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या है, आई शुड डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो फिर हमने सोचा कि यार देन आई वेंट इन टू रीडिंग यू नो डिफरेंट वेदास, उपनिषद एंड बौद्ध गीता, देन कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, बहुत स्वामी जी से मिले और क्रिश्चियन फादर से मिले, और उसके बाद में पता चला कि यार हम वी शुड बिकम ए लाइफ कोच, मतलब लोगों को जिंदगी आराम से खुश से कैसे जीना मैं सिखा दूंगा, ऐसा बोल के हमने स्पीकर बना। मैंने फौज को रिजाइन कर दिया। फिर बाद में मैंने सोचा बड़े लोग ना सीखने के लिए तैयार नहीं है, और सब लोग बोलते हैं कि हमारा 30-40 साल हो गया, शादी हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मगर मेरे बिटिया है ना वो नहीं पढ़ती, मेरा बेटा है ना वो बिल्कुल इतना जिद्दी है किताब नहीं खोलता, इनका कुछ करो, ये हमारा फ्यूचर है। फिर हमने सोचा आजकल 65% पॉपुलेशन इज ऑफ यू नो इंडिया इज अबाउट यूथ, इनको क्या तकलीफ है, इनको अच्छा नंबर लाने का, ग्रेड्स लाने का, IIT क्रैक करने का, NEET एग्जाम क्रैक करने का, UPSC क्रैक करने का, बैंक में एग्जाम, ओके दे वॉन्ट टू क्रैक द बैंक एग्जाम। तो मैंने सोचा विदाउट मेकिंग टीचर्स क्राई, विदाउट मेकिंग पेरेंट्स क्राई, वो कैसे याद कर सकते हैं, वो भी हंसते गाते खेलते कूदते कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने इस फील्ड में आया, और ये 12 साल का जर्नी है मैं, और मैंने लंदन गया, कुछ मेमोरी सीखा, टेक्निक सीखा, फिर आया कुछ बहुत सारे किताब पढ़े, बहुत लोगों से मिला, और बच्चों को सिखाते सिखाते उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने क्या किया, एक छोटा सा मैनुअल जैसा टेक्निक बना दिया। और हम लोग क्या करते, हिंदुस्तान का हर सिटी हम लोग जाते हैं, जहाँ पे स्कूल में जब बच्चा पैदा होते है ना, मम्मी पापा ABCD सिखाती है, थोड़ा बड़ा होगा बोला बेटा ए फॉर एपल बी फॉर बैट, कभी मम्मी नहीं बोलती बेटा आपको एक ब्रेन है इसको ऐसे यूज करना, कभी मम्मी नहीं बताती। जब स्कूल में जाता है बच्चा, मैडम शुरू करती है इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी एंड देन सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। 3 महीने हो गया, मिस बोलते कि बेटा अभी कल क्वार्टरली एग्जाम है, क्वेश्चन नंबर 3, 5, और 8 आएगा तो याद करके आना। तो बच्चा बोलता मैम कैसे मैं याद करूं, मैम बोलते कि मुझे भी नहीं मालूम तू जा। इसका मतलब घर में ना मम्मी, स्कूल में ना टीचर, दोनों नहीं बोलते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे नंबर 1 आ जाए। सो बच्चे बहुत सर तकलीफ है मैडम पूरे हिंदुस्तान में, अभी आप देखते हो पेपर में पढ़ेंगे इतनों, हर 2 दिन में एक बच्चा IIT एग्जाम का वो टेंशन में, स्ट्रेस में, इवन दे आर कमिटिंग सुसाइड आल्सो। तो मैं ये मकसद लिया हूं कि पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना रहे कि वो सोचे कि मेरे एक सपना है, मेरे एक गोल है, मेरे एक एम है, और मुझे उसको हासिल करना मुश्किल हो रहा है, आई कैनॉट डू, आई डोंट वॉन्ट हैव एनी बडी सच पर्सन। इसलिए वी ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस, एंड इसी वास्ते हम लोग अभी बेलगाम में हैं, अभी 250 बच्चे और 300 पेरेंट्स भी अभी मेमोरी सीख रहे हैं, ऐसा कि महीने में 20-25 दिन हम लोग हिंदुस्तान में, और अभी तक हम लोग 35 कंट्रीज में घूमा। आई टीच पीपल अबाउट मेमोरी, सो दिस इज आवर माई बिकम लाइफ पर्पस, ओके, दैट्स व्हाट इज माई होल एम ऑफ दिस मेमोरी प्रोसेस।
1: ओके, यानी कि खुद ने जो कुछ भी झेला चाइल्डहुड में,
2: यस मैम,
1: वो बाकी के पेरेंट्स या फिर बाकी के बच्चे वो फेस ना करे, इसलिए आपने ये स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव युग में ये ही बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कैसे डेवलप करें या फिर कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। और जैसे आपने कहा कि स्कूल में टीचर इतना इतना होमवर्क देती है, वो कैसे करते हो आपके ऊपर है। फिर कुछ लोग ट्यूशन लगाते हैं, कुछ लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छे नंबर्स नहीं आते कई सारे बच्चों के, तो वो नर्वस होते हैं और काफी डिप्रेशन तक भी बात जाती है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो पेरेंट्स हैं, उनको आप अभी मेमोरी स्किल्स सिखा रहे हैं या फिर वो कैसे डेवलप करें वो सिखा रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसको प्रिपेयर करते रहते हैं बच्चे, और वो क्रैक ना होने पर काफी दिक्कतों का सामना करते हो या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो। तो बहुत अच्छा एम है आपका, उद्देश्य बहुत अच्छा है।
2: थैंक यू सो मच।
1: और उसके लिए हमारे वेणुधुनी की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका ये उद्देश्य ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही कई सारे बच्चों को, कई सारे पेरेंट्स को या फिर कई सारे लोगों को आप हेल्प करते रहे इस माध्यम की तरफ से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों की मेमोरी हम कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर आप सेमिनार लेते हैं।
2: यस मैम।
1: तो उसका कुछ एज लिमिट रहता है क्या कि इस एज ग्रुप के बच्चे जल्दी पिकअप ले सकते हैं, या फिर इस एज ग्रुप के जो पेरेंट्स रहते हैं या फिर यूथ रहता है वो जल्दी पिकअप कर सकते हैं, ऐसे कुछ हम डिवाइड कर सकते हैं?
2: हाँ, हमने बहुत कुछ रिसर्च किया मैम। बेसिकली चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्थ क्लास टू टेंथ क्लास जल्दी पिकअप कर लेते हैं उनका। स्पेशली जितना कम उम्र में हम उनको मेमोरी सिखाएं उतना अच्छा वो लोग परफेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो तब क्या होता है मालूम है, जब हम लोग पीयू कर देंगे तो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं और आईआईटी कर रहे हैं, न कोई लॉयर है, रहे कोई कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ऑलरेडी सिलेबस इतना कुछ होता है। अभी ये कुछ टेक्निक सीख के उनको इंप्लीमेंट करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। बट जब छोटा बच्चा होता है ना, उनके पास बहुत टाइम होता है एंड दे विल हैव एनफ टाइम टू प्रैक्टिस एंड परफेक्ट। और जब ये बच्चे व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड देन दे विल बी एबल टू अप्लाई। इसका मतलब जितना जल्दी जितना कम उम्र में हम बच्चों का मेमोरी सिखा देंगे दैट मच बेटर इट विल बी फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। ओके, एंड कम उम्र में अभी क्या होता है, जैसे कि व्हाइट पेपर है, हम लिखना बहुत आसान है। अभी कोई पेपर में कुछ हमने लिखा पेंसिल से, उनको अभी इरेजर से इरेज करके फिर दोबारा लिखना मेहनत पड़ता है। जैसे कि हमारा उम्र है 30-35 ईयर्स, हमने एक मेथड हमने सीख लिया जैसे कि रट्टा मारना, बायहार्टिंग करना। जैसे कि आपने देखा होगा थ्री इडियट्स मूवी में वो चित्तू रामलिंगम की कहानी है ना, वो क्या करता है, वो रट्टा मारता बिना ब्रेन यूज करके। तो अभी उनको एक मेथड मालूम है, अभी नया सीखा है ना, उनको अभी उसको अनलर्न करके इसको लर्न करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। छोटा बच्चा सफेद नो कागज जैसा जो हम सिखा देंगे ना, एंड दे विल बी एबल टू लर्न। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट जितना कम उम्र में बच्चों को सिखा देंगे उतना अच्छा ग्रोथ होगा एंड दे विल रियली एंजॉय स्टडीज मैडम। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा हिंदुस्तान में कि मुझे नंबर नहीं आता, मुझे पढ़ाई मुश्किल है। बिकॉज बच्चा टीवी देखने के लिए बोलते हैं ना, 4-5 घंटे बैठते हैं। अभी वर्ल्ड कप T20 मैच हुआ, रात को 1:30 तक बच्चे बैठ के देखते हैं और किताब खोलने के लिए बोलते बोलता 2 मिनट नहीं बैठते ही ना मैडम। इसका मतलब क्या है, बच्चा बैठ सकता है, उनको अच्छा इंटरेस्ट है तो उसमें मजा आता। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, ऐसा कोई हार्ड वर्क करके तो आप कर नहीं कहते। हार्ड वर्क करके तो फुटबॉल नहीं खेलते, हार्ड वर्क करके टीवी नहीं देखते, हार्ड वर्क करके तो हम लोग वीडियो गेम नहीं खेलते। ये हार्ड वर्क क्यों करना, नो कैन यू रियली प्ले विथ योर बुक्स ना, ओके, कैन यू मेक योर बुक एज योर आपका फ्रेंड बना सकते हो, कैन यू रियली एंजॉय रीडिंग ना। इफ यू कैन मेक दैट राइट, बच्चों को कभी पढ़ाई करो वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ता मैडम। बिकॉज एक जमाना था जब हम छोटे थे, 35% मार्क्स आ गया, पास हो गया, नौकरी मिला, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गया, अभी 60-40 साइट में हम लोग घर बना दिए, एक कार भी हो गया। अभी देखिए इंडिया हिंदुस्तान पूरा दुनिया में नंबर 1 पॉपुलस कंट्री, हम लोग चाइना को भी ओवरटेक कर दिया। अभी सोचो 10-15 साल के बाद हमारा कॉम्पिटिशन बगल वाला स्टेट से नहीं होगा मैडम। हम भी कभी कोई जर्मनी वाला, कोई जापान वाला, कोई रशियन वाला, कोई अमेरिका वाला, कोई इंग्लैंड वाला, अभी ऑनलाइन में लोग काम करते हैं। मतलब यहाँ फ्लाईओवर करना है, वो अमेरिका वाला डिजाइन दे रहा तो इसका लोग जाते हैं ना। तो सोचो 10-15 साल के बाद हमारा बच्चा जब कंपटीशन करेंगे चाइना वाले के साथ, उनके लिए व्हाट शुड ही हैव विथ हिम नो। जो स्कूल में तो हर पर्सन, आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेस पर्सन हो, पैसा वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, इंक्लूड रिक्शा वाला भी, वही सोचता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ाई किया, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम चले जाए और फीस हम लोग भरेंगे, हम लोग भूखे रहेंगे। वो तो हर आदमी करता है। उसके अलावा कुछ और सिखा देंगे क्या, एक जो मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, हाउ टू रीड फास्टर, हाउ टू रिमेंबर नो, ये भी इनको हम सिखा देंगे तो दे विल हैव एक्स्ट्रा वेपन एंड देन दे कैन फेस एनी कॉम्पिटिशन। सो एवरी पेरेंट शुड गिफ्ट दिस पर्टिकुलर स्किल टू चिल्ड्रन और हर स्कूल इसको एक पार्ट ऑफ द सिलेबस में पढ़ाना होगा। अभी क्या मिस बोलती लेसन पढ़ाती है ना मैडम, पढ़ाने के साथ साथ ना आपने समझा दिया, उसके बाद ना इसको जो समझाए ना वो कैसे याद कर सकता, वो मिस बोल सकते हैं, तो बच्चा घर में आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, हमको ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एंड बच्चा वो आर्ट करेगा, स्पीकिंग सीखेगा, मम्मी को किचन में हेल्प करेगा, पापा को घर का काम में हेल्प करेगा, दादी माँ को मंदिर लेके जाएगा, दादाजी को पार्क में ले जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, मतलब ही विल बिकम ऑलराउंडर नो। तो ये बचपना हम लोग ना ये रैंक का चक्कर में हम लोग उसे छीन रहे, मतलब 24/7 मतलब स्कूल जाएगा ना आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, किताब खोलेगा, ना उसका ना खेलने का टाइम, ना कूदने का टाइम, ना कोई फंक्शन अटेंड करने का टाइम, कुछ करने का टाइम। तो इसलिए क्या होता है, अभी जब आप जिंदगी में ना देखेंगे ना क्या है जिंदगी में, बस पढ़ाई कर रहा था, मैं नौकरी कर रहा था, फिर शादी किया, बच्चा पैदा किया, जिंदगी कभी मजा लिया क्या, कभी एंजॉय किया क्या, कुछ कुछ कर दिया क्या, वो टाइम नहीं है। सो टाइम इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। जिंदगी में तो विदाउट मी ऑल्सो आप कुछ भी कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट। ओके, अब देखिए मैडम, भगवान ने हम सबको दो पैर दिया, जाओ कहीं तो पैदल जा सकते हैं ना, जाना ही तो पैदल, तो फिर बैलगाड़ी क्यों, साइकिल रिक्शा क्यों, बाइसिकल क्यों, स्कूटी क्यों, बाइक क्यों, ऑटो रिक्शा क्यों, कार क्यों, मेट्रो ट्रेन क्यों, एरोप्लेन क्यों? बिकॉज हम बेलगावी से दिल्ली में जाना 3 घंटे में हम जा सकते हैं एरोप्लेन में, अभी हम लोग पैदल जाना कितना दिन लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जब हमारा ब्रेन है जो भगवान ने दिया, इतना अच्छा गैजेट दिया, इतना अच्छा सुपर कंप्यूटर दिया, इसको यूज करना सीख लेना, और सीखने के बाद क्या बोलता है, बस कुछ भी किताब होगा आप आराम से याद कर सकते हो मैडम। हम लोग वही नो कर रहे हैं एफर्ट कि बच्चों को हम लोग सिखा दें, जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना स्कूल में समझो और हमारे साथ सीखो कैसे याद करने का, तब एग्जाम बहुत आसान होगा मैडम।
1: तो आपका क्या मानना है कि आपके जो कुछ टेक्निक्स है वो सीखने के बाद में बच्चा जो स्कूल में सीखता है वो इमिडिएटली याद कर पाएगा, एग्जाम में उसको दिक्कत नहीं होगी?
2: बिल्कुल नहीं होगा, इट बिकम्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इट विल बिकम, बिकॉज हम सिखाते हैं ना कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा कैसे याद करने का, या कोई भी नंबर्स होगा, न्यूमेरिकल डेटा, हमने एक मेथड इन्वेंट किया फोनेटिक मेथड, वो कैसे याद करके, जैसे कि हिस्टोरिकल ईयर्स होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा, नहीं तो बॉइलिंग मिल्क टेम्परेचर होगा, अभी बेलगांव सिटी का पॉपुलेशन कितना, लोकसभा कितना में कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी नंबर याद करना कैसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई श्लोक याद करना पड़ेगा, कोई गाना याद करना पड़ेगा, कोई मंत्र याद करना पड़ेगा, कुछ भी चीज ना, हर एक मेथड हमने डेवलप किया, और बच्चा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन, एक बार सीख लेगा ना, थोड़ा उनको मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा मदद करेंगे ना, तो दे कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड दे कैन लर्न मैडम।
1: तो ये टेक्निक सीखने के बाद में इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए, या फिर एक 8-10 दिन का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया तो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा?
2: नो, प्रैक्टिस करना मतलब देयर इज नथिंग टू डू स्पेशल प्रैक्टिस, आपने जो सीखा ना एंड उसको टेक्स्ट बुक में अप्लाई करना होगा, और उसके लिए कोई जबरदस्त नहीं होता, बिकॉज जब आपको कार चलाना आता है, यू लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार, 1 हफ्ता लगा आपको, 1 महीना लगा, लाइसेंस मिला, अभी आपको एक दो चॉइसेस है, यहां से आप बेंगलोर पैदल जा सकते हो, कार में जा सकते हो, कार आपके पास है, लाइसेंस है, आपको आते हैं ड्राइव में, तो आप क्या सोचते हो, कार में जाऊंगा ना, आसान होगा ना? ओके, सो व्हेन दे नो, जब हमारे पास आसान मेथड है तो कष्ट क्यों करने का? सो जब अप्लाई करेंगे ना, दैट ओनली विल बिकम नो प्रैक्टिस हो जाता, नो नथिंग टू डू फर्दर, मगर लिटिल बिट नो द वेरी फैक्ट दैट दे प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ दिस टेक्निक्स नो दे बिकम वेरी एक्टिव। अभी विराट कोहली है, क्रिकेट पता नहीं पिछले 10-15 साल से खेल रहा है, अभी भी सुबह उठ के वो रनिंग करता है, वो कैच प्रैक्टिस करता है, विकेट्स के बीच में दौड़ना प्रैक्टिस करता है, बैटिंग प्रैक्टिस करता है, और रवि शास्त्री का, सुनील गावस्कर का, अभी वो ही विल टेक एडवाइस आल्सो हाउ टू नो हिट द बॉल। तो ऐसा है ना, हम लोग उनको जिंदगी भर सपोर्ट करते हैं एक कोच का तरह से, तो तब क्या होता है, हैज दे गो टू हायर क्लासेस नो दे नो हाउ टू अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, सो ऐसा हम लोग सपोर्ट करते करते रहेंगे, 2-3 साल के बाद दे विल नॉट नीड एनीबडीज हेल्प, खुद वो लोग जान पाएंगे कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये टेबल है, ये डेफिनेशन है, हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। आजकल मैडम आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चे हमको सिखाते हैं कि सर ये मेथड नहीं, सर आप गलत है, सर ये करो सर बहुत आसान होगा, एंड बच्चे मैडम सो क्रिएटिव, ओके, सो सो ब्यूटीफुल, ओके, बिकॉज हम लोग बड़े लोग ना, हम लोग सोचते हैं ना कि एक ही रास्ता होगा, बच्चों को ना दे आर टोटली अनकंडीशन, बोलते कि ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों, उसी में होता है मैडम कुछ नया चीज का इन्वेंट करने का। सो हिंदुस्तान इज अ ग्रेट कंट्री मैडम, और बच्चे तो दे आर सो पावरफुल, ओके, और मैं जो कुछ मैं सच बोलूं तो मैं बच्चों से मैंने सीखा ओके और बिकॉज वो बच्चे हर जगह नहीं जा सकते, हमने उनसे सीखा और हमने खुद अपना ब्रेन अप्लाई किया और उसको एक मैनुअल बना के हमने सिखा रहे ओके सो अवर चिल्ड्रन आर सो ग्रेट और हिंदुस्तान तो सबसे आगे।
1: बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और जैसे बच्चों से आगे अगर हम सोचते हैं तो यूथ जनरेशन जो रहता है उनके दिमाग में काफी कुछ अलग अलग चलते रहता है क्योंकि एज भी फैक्टर करता है, तो उस हिसाब से उनका दिमाग बहुत सारी जगह पे घूमता रहता है। तो वो अगर कॉन्सेंट्रेट उनको करना है एक जगह पे तो उसके लिए भी कुछ आपका ट्रेनिंग हेल्पफुल होता है?
2: यस मैम, कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि मेनी पेरेंट्स बोलते हैं कि जब मैं छोटा था बहुत अच्छा था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, आजकल का बच्चे बिगड़ गए। हम लोग सब लोग वही सोचते हैं ना। अब जो अभी अपना विनोदवाणी अपना प्रोग्राम सुनने वाला भी वही सोच रहा होगा कि जब मैं अच्छा था मेरा बच्चा ओके ठीक नहीं है, वो पूरा हमेशा टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है। हम अच्छे थे क्योंकि बिगड़ने का चांस नहीं था। अभी देखे मैडम, इतना सारा OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है ओके, एंड देन Zee5 है, सोनी लिव है, डिस्नी हॉटस्टार है, इतना सारा चांस है ना। अभी IPL खत्म हो गया, वर्ल्ड कप T20 खत्म हो गया, अभी इंडियन टीम हैज गॉन टू प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे के साथ अभी T20 गेम खेलने का। हर दिन एक मूवी आता रहता है, वीडियो गेम्स है, एंड देन YouTube है, Instagram है, इतना कुछ दुनिया बदला ना। तो यू कैन नॉट एस्केप नो नाउ डिस्ट्रैक्शन है इनका। और जब टीनेज आते हैं ना, और जो मोर देन घर में अपना दोस्त को देखेगा स्कूल में कॉलेज में, जब वो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेलें? इसका मतलब मेरे मम्मा पापा कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि इसलिए जैसा मैं सर हम लोग ना हमारा घर में केबल टीवी कट कर दिया, इवन हम लोग आईफोन भी यूज नहीं करते, ओनली वो जो पुराने जमाने का वो फोन यूज करते। अभी मैडम ऐसा है, वो गौतम बुद्ध का पिताजी को भी ऐसा मालूम चला था जब बच्चा पैदा हुआ कि कोई बोला कि वो बच्चा सेंट बनेगा, सेज बनेगा, वो कोई वो बाबा जी बनेगा, तो बच्चे को एक महल में बंद करके रखा कि वो किसी का दुख ना देखे, किसी का मौत ना देखे। मगर ये बच्चा एक दिन वो अपना विंडो के साथ ना देखता है एक ओल्ड मैन वॉकिंग और एक डेड बॉडी गोइंग, सोचता है कि ये जिंदगी है क्या? नो, ही विल बिकम गौतम, ही वेंट ऑन टू बिकम गौतम बुद्ध ना। इसलिए इससे हम लोग छुपा नहीं सकते, इसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते। हम लोग एक आइलैंड में तो नहीं जी पा रहा ना, तो कितना दिन बच्चों को ऐसे कैद करके रखेंगे बच्चों को? मैं ये बोल रहा हूँ पेरेंट्स को जो अपना प्रोग्राम सुन रहे कि ये तो रहेगा, दिन ब दिन और कुछ टेक्नोलॉजी आएगा और कुछ गैजेट्स आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ओके, मेरा बच्चा फिर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए तो उसका क्या प्लान है क्या? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग नो, यू कांट एस्केप नो। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मोबाइल देगा, टीवी होगा, इंटरनेट होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, टिकटॉक होगा, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा बच्चा फिर भी क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उसके लिए टेक्निक होना चाहिए ना। तो दैट गोल, दैट एम्बिशन, दैट ड्राइव, दैट पैशन बच्चों में एक चाहत, मतलब उनका जिंदगी में क्या बनने का ओके। नाउ यू शुड इंस्पायर दैट बॉय सो दैट, ये सब तो मेरा टूल्स है, ये टेक्निक्स है, देयर गोइंग टू हेल्प, बट मेरा मकसद कुछ है जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का। जैसा कि मोदी जी चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बना, नाउ अब्दुल कलाम जैसा कि एक साइकिल में पेपर भेजने से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, धीरूभाई अंबानी जो पेट्रोल बेचता था पेट्रोल बंक में, इतना बड़ा आदमी बना, हम कैसे बने? उसके लिए मैं अपना टाइम कैसे प्लान करूं? इफ दे अंडरस्टैंड एंड उनको एक अच्छा रोल मॉडल मिलेगा, एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। बच्चे तो कोई बच्चा नहीं बोलता दुनिया में कि माँ मैं स्कूल में लास्ट आना चाहता हूँ, माँ मैं एग्जाम में फेल होना चाहता हूँ, माँ आपको मैं रुलाना चाहता हूँ, ऐसा कोई बच्चा अपने कोई कमकरा से एनीबडी लाइक दैट? नहीं ना, बच्चे तो अच्छे हैं, हमको नहीं मालूम उनको बच्चों कैसे इंस्पायर करना ओके। इफ यू डू दिस नो वी कैन डू मिरेकल्स मैडम, एंड कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे बच्चे 100% कर पाएंगे।
1: एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ काफ़ी सारे भी टूल्स हमारे हाथ में हैं, या फिर इजीली हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल रहता है, इतना सब कुछ प्लेटफॉर्म हमारे पास रहने के बावजूद भी टीनेज एज के जो स्टूडेंट रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं वो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है।
2: Absolutely.
1: और इसके

0: नाम से सेव किया है वो भी हमें याद नहीं रहता। तो ये काफी मैंने सुना है कई बार कि ऐसे हो जाता है कि किस नंबर से वो सेव, किस नाम से सेव किया है उनका नंबर वो याद नहीं आता। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ऐसे होता क्यों है।
1: ये होता क्यों, बिकॉज ब्रेन का एक फॉर्मूला मैडम, यूज इट और लूज इट। ओके, आप यूज करते रहेंगे तो ब्रेन का अंदर सेल्स रहेगा, नहीं तो नहीं जेल चले जाएगा। अभी लुक एट माय हेयर, अभी मैं अपना बाल कट करूंगा तो अगेन दे विल ग्रो। इफ आई कट माय नेल्स अगेन दे विल ग्रो, मेरा स्किन निकलेगा फिर दोबारा स्किन आ जाएगा। ब्रेन के अंदर जो सेल्स है ना, एक बार मर जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं होगा। ये आपको हम सबको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो है उनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, हमको हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ता रहता है, किताब पढ़ना रहता है, कुछ ना कुछ जानना। नो, वी शुड कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, वी हैव टू कीप ऑन यूजिंग आवर ब्रेन। सो मोस्ट पीपल स्पेशली द वुमेन और पीपल जो बिजनेस में सेटल होता है ना, तो जो कल किया सो आज किया सो फिर अगेन दोबारा, मतलब नए चीज कुछ हम लोग नहीं सीख रहे और घर से ऑफिस सेम रास्ता आते हैं, सेम काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो सेल्स जो है ना सोचता है कि मेरी जरूरत नहीं है, तो दे स्टार्ट डिटेरियरेटिंग। जैसे कि आपका अपने घर में किचन में एक चाकू है, नाइफ है, हम यूज नहीं करेंगे 6 महीना, ब्लंट हो जाएगा, तो उसको यूज करने से विल बी बेटर नो। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ना जिंदगी में कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कुछ नई चीज सीखता रहना चाहिए, एंड यू शुड कीप यूजिंग दैट, देन दे विल हैव गुड मेमोरी। अभी WHO का रिपोर्ट है कि पूरा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया में 40 साल से ज्यादा जिसका उम्र है 80% ऑफ देम ये अल्जाइमर डिमेंशिया का शिकार है। मतलब जैसे कि वाजपेयी जी का 5 साल बिफोर उनका देहांत से पहले उनका याददाश्त बिल्कुल चला गया। उनको नहीं मालूम था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं मालूम था उनको भारत ने दिया था, वो था मगर नहीं था। रोनाल्ड रीगन द फार्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, पिछले 2 साल बिफोर उनका डेथ ना, अपने बीवी नैन्सी रीगन को ही कुड नॉट इवन आइडेंटिफाई। और सब लोग ऐसे है, कुछ लोग अपने घर का एड्रेस बोलते हैं क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग। एक तो स्ट्रेस है और स्ट्रेस से ओवरकम करने का नंबर वन। नंबर टू क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप नो लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, पहले बॉडी फिट रखो और ऑटोमेटिकली ब्रेन फिट रहेगा। और कभी कभी सुडोकू पजल सॉल्व करो, क्विज क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, किताब पढ़ो, कुछ नया स्किल सीखो, बड़े लोगों से बात करो। जैसे कि हमारे जो श्रोता हैं जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं वो काम में बिजी है, फिर भी कुछ जानने की जो चाहत है ना, दिस वन क्वालिटी हमारा 90.4 FM का जो भी श्रोता है ना, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क, तो वी आर इन द राइट पाथ। ओके, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो बोलेगा मैं गाना सुन रहा हूँ, ये जयसमा कौन है, ये मनीषा मैम कौन है, ये मेमोरी क्या चीज है, हमको जरूरत ना चाहिए, तो कुछ जा सकता है ना, स्विच ऑफ कर देते। मगर कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, ये जो चाहत है ना मैडम, दैट इज एनफ फॉर यू। सो एज लॉन्ग एज वी हैव गॉट, ऐसा हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो प्रोग्राम सुनने वाला वेणुध्वनि का, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल आर द राइट पाथ टू हैव गुड मेमोरी टिल वी आर अलाइव।
0: ओके, यानी कि हमें हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमारी मेमोरी को थोड़ा काम देते रहना चाहिए।
1: yes, ब्रेन को यूज करना,
0: तभी ये एक्टिवेट रहेगी हमेशा, और हम जो भूलने की मतलब बीमारी हमें लगी रहती है उससे थोड़ा बाहर निकल सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली राइट मैम।
2: दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम। स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा की सिद्धियां एक शो में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। फिलहाल आज हम आप सभी से विदा लेते हैं। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपने हुनरों को तराशने की कोशिश कीजिए। सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM के LE कनसु।
3: बेळगाव मधील KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे। तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील। KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणे आणि योग्य उपचार करणे, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणे हेच आमचे ध्येय। तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव। फोन नंबर 0831 2486286।

गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ। डर गए आप? अरे डरो नहीं, कोई चुगली नहीं करने वाली मैं आपकी मम्मी से, ना ही आपके कोई राज खोलने वाली हूँ। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं आप सबकी मम्मीज को जानती हूँ और उनके मन की बात समझती हूँ। कैसे? नहीं समझे? समझाऊंगी कुछ गानों के बाद। शुरू करते हैं आज का शो और सुनाती हूँ शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

बेसिक सा लॉजिक है, चाहे आपकी मम्मी हाउसवाइफ हो, चाहे आपकी मम्मी बैंकर हो, चाहे आपकी मम्मी डॉक्टर हो, लॉयर हो, होटल चलाती हो या कोई भी काम करती हो या कुछ भी ना करती हो, पर आपकी मम्मी क्या सोचती है और

धन्यवाद की मामी, वो क्या सोचती है क्या चाहती है ये सब माँ का सेम ही होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ सपने जो हर माँ देखती है। सुंदर ये के एल ई वो गरी 90.4 FM, रिलैक्स राजेश्वरा।

अब आप कहोगे कि सर इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, अपना बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए यही तो माँ का सपना होता है। ऑफ कोर्स ये सपना तो हर एक माँ का होता है, ये पूरा हो या ना हो ये तो बच्चे पर निर्भर करता है, तो ये सपना तो हर माँ

अंगूर आदमी बन जाए, अच्छा इंसान बने, जिम्मेदार नागरिक बने, ये सपना हर एक माँ का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपने हैं हमारी माँओं के, जो हर माँ के कॉमन सपने होते हैं। क्या है ये सपने, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLED 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

कि एक बार आवाज लगाने पर आप हाँ माँ वो जवाब दे दो। हम जब छोटे होते थे तो हमेशा माँ माँ ये माँ वो, मुझे ये हुआ वो हुआ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसने ये कहा वो कहा, हर एक छोटी छोटी

दस बार बुलाने पर एक बार जवाब देते हैं। तो हमारी माँ का एक बेसिक सा छोटा सा सपना है कि एक बार जब वो आवाज लगाए तो तुरंत ही आप उसे जवाब दे दे। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। सुंदरी

का दूसरा सपना ये है कि हम अपनी चीजें उनकी जगह पर रखें। जब भी हम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कहीं भी बाहर से घर आए तो जूते उतार कर जगह पर रखें, अपनी बैग जगह पर रखें, कपड़े बदल कर, हाथ मुंह धोकर, मस्त ठंडा पानी

हमारी माँ का ये सपना भी होता है कि वो सुबह जब हमें आवाज लगाए हम तुरंत ही जाग जाएं, पर हम तो ठहरे हम थोड़ी ना पहली आवाज में जागने वाले हैं, इसलिए हम अब 5 मिनट 5 मिनट करके

कोई तो बैठे रहती है। ये डायलॉग हमने अपनी जिंदगी में कभी न कभी हमारे माँ के सामने सुनाया ही होगा, पर जब हम खुद घर संभालते हैं ना, तब पता चलता है कि हमारी माँ कितना काम करती है।

हमारी माँ का एक मजेदार सपना ये भी है कि हम जहाँ कहीं पर भी टिफिन लेकर जाए वो टिफिन वापस लेकर आए, क्योंकि बच्चे टिफिन, वाटर बॉटल और स्टेशनरी, पेंसिल,

इन सब का ध्यान रखते हैं, पर किसी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। कितना भी बड़े हो जाओ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप रोजाना टिफिन लेकर तो जाते हैं पर बहुत बार भूल कर वापस आते हैं। तो हमारी माँ का, हमारी मासूम प्यारी सी माँ का ये सपना है कि हम उसका टिफिन रोजाना बिना भूले वापस लेकर आए, और वो टिफिन खाली हो जाए, चट कर जाए, तो माँ तो बहुत ही खुश हो जाएगी। सिर्फ

जब हम शाम को घर लौटते हैं और हमारी माँ दरवाजा खोलती है तब उसके कुछ गिने चुने सवाल होते हैं जो वो रोज पूछती है। कैसा रहा तुम बेटा, कैसे हो तुम, ओ मेरा बेटा थक गया, कुछ खाओगे? ये सारी बातें होती है उसके पीछे उसकी इच्छा।

बच्चे घोंसले से दूर होते हैं, जब बच्चे घर से दूर होते हैं तब माँ की बस एक ही इच्छा होती है कि दिन भर में एक बार समय निकाल कर बच्चा कॉल कर ले और अपनी माँ से बात करे, ये बता दे कि वो ठीक है और ये पूछ ले कि क्या वो ठीक है। बस इतनी सी इच्छा होती है।

जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती है। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपनी माँ को कॉल कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।